0: नमस्ते, म गायक अनि संगीतकार विनोद खम्बु। यहाँहरू यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ शङ्कर सभाको खातबारीबाट सञ्चालित पहिलो अनलाइन रेडियो नागरिक चासो। सूचना र संचार मनोरञ्जनको लागि सुन्ने गरौँ नागरिक चासो।
1: हर चेहरे में तेरा अक्स नजर आता है, क्या कहें तेरे बारे में, तू हर रूप में खूबसूरत नजर आता है।
2: प्रदीप सोनू।